0: May 2026. The closure of the Strait of Hormuz has caused havoc in parts of Pakistan that have been left in the dark. Chronic power cuts, coupled with rising electricity bills, has spilled into anger on the streets. Today's rally is organised by the Lahore Rickshaw Union. Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi, bijli aati hai to gas chali jati hai, aur phir is awam pe ke jinki dukane रात 8 बजे बंद कर दी जाती हैं उन लोगों पे टैक्सेस की यलगार कर दी गई है लोगों का जीना महाल हो चुका लोग इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं कि लोग इस हुकूमत के खिलाफ निकले महंगी बिजली महंगी गैस महंगा पेट्रोल
2: पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा वापस लें लोड शेडिंग खत्म करें ताकि عوام को सहूलियत मिले ताकि हम मिलकर दुनिया को एक मजबूत पैगाम दे सकें यह लाहौर में आज यह पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी जिला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम عوام की आवाज और عوام के مطالبے जो पूरे जोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे यह सिलसिला जारी रहेगा
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: इसके कमेंट्स वगैरह देखे ना
4: ठीक है
3: ये भी रिसीव इससे कह लो गिनती करके
4: ठीक है
3: हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
4: लगवा दो
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है मैं लोकल क्रीम लग मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ
3: यार इसको सही तरह सेट कर लिया था आपकी ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਾਰਦਾ ਆਪ ਸੁਣਾਓ
6: ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਡ ਸ਼ਟਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪਿਆ ਇਹ 3 ਘੰਟੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ 3 ਘੰਟੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
3: ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
5: देखें बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना लेते हैं अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप एक वीक दो वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो सा है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है उसने यहाँ पर तीन मैक्सिमम 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना है, ठीक है। अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा।
3: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए पार्टीज को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीज़ें होंगी ना।
0: Countrywide power shortfall has reached 4,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
7: In the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost of energy for this particular month and until the US-Iran war issue is resolved.
0: Power grid has forced a people-driven revolution. The Hall Road market in Lahore is the commercial heart of Pakistan's solar boom. Since 2017, Pakistan has imported 58 gigawatts worth of solar panels, making Pakistan one of the world's biggest importers.
8: Government ki price itni zyada high hai ki har banda चाहे वो उसके पास एक प्लेट की पैसे हो ना तो वो एक प्लेट ही बाई करने आ जाता है। लाहौर लाहौर के अंदर तकरीबन 4 से 5 जोन है जहां सोलर बिकर है। जैसे आप हालोड ले लें, आप जौहर टाउन ले लें, आप DHA चले जाएं, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए, अब हर तरफ अब सोलर बिकर है। हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है, चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है। वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है।
9: 18
10: चल रहे 2-4 दिन बाद तुम कहोगे यार घर का साड़ा बल्ब सड़ जाता, पहला नहीं सड़ता हूँ सड़न लग गया। क्यों? करंट साफ नहीं गा, ऐसा करंट होता है फिल्टर, फिल्टर करंट होता है। लोग क्यों लगवाते हैं ऐसी वजह तो लगवाते हैं कि यारी लाइफ ज़्यादा है।
8: जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है, प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना के इम्पोर्ट की जाती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तलीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम, उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं। एज अ बिजनेस प्लान देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है। सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती, और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इनकम आई है और काफ़ी फ़ायदा हुआ है लोगों को।
0: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
11: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सीख सकते हैं।
9: solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.
12: Solar now is the cheapest form of electricity, and people who cannot afford any other source can put up solar.
9: Pakistan is heavily reliant on fossil fuel imports, and those imports, most of them, they pass through the Strait of Hormuz. Because of the solar rush, the country has been able to basically avoid 12 billion US dollars of fossil fuel imports since 2017. And then it is well on its way to save another 6 billion dollars by the end of this year, which is quite remarkable. The country would be able to save anywhere between 100 to 125 billion US dollars over the lifetime of the solar panels that have already been imported to the country.
0: The country's solarization is now leaving a trail of prosperity in the rural parts of the country.
13: China wants more marriages and births, but this push is fueling debate over gender roles.
14: 男主外女主内这种理想一直都没有改变。如果说结婚要让我放弃我现在的生活模式的话，其实我就是真的不太想结。What's
13: behind the growing divide between what Chinese women and men want?
15: 社会上对男性的要求是过高的，对于女生的要求是几乎没有的。但凡站到女性站出来讲话这个点，她就会觉得你是一个女权。Insight
13: Thursday on CNA.
16: About something that affects all of us. Today, I want to talk about.
17: Get the award-winning, stressless Atom Recliner in stores today.
18: CNA 938. News you can trust to start your day informed.

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: This solar system, main jo wire iske panel lage hue tha, to wahan se iski sari wire ja rahi hai. Ye phir aage se jo hai na, ye system sara, ye inverter lage hue hai. Theek hai ji? ये इनमें सारी ये बिजली जो है इस इनमें जाती है, फिर ये आगे इस वक्त मिल जो है ना वो चल रही है, और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे।
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी, लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया, एक बचत इसमें काफी हुई है। एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया, और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी हो गई है, तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है, क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है। सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा। इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिसके लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है, या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है। इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद।
0: Decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
3: उसकी सर सीएनएफ कराची रेट दे रहा है $23,000। कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है, ऑल वन में ही है।
4: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार।
0: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
5: In Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority for any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan, and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy, and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce carbon emission, bring Pakistan out of debt, and it will result in prosperous Pakistan.
0: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro and nuclear.
5: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit.
4: people had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
0: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
6: On average, 17,000 megawatt jo hai, wo import ho rahe hain solar panels each year. So when there is so much bulk quantity in one thing, then if its quality is compromised, then the technology can defame and its consequences can be very much. तो हमने उसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हमारा प्लान ये है कि हमने इसको जो है वो मैंडेटरी लिस्ट ऑफ आइटम्स में जिनकी हमने क्वालिटी कंट्रोल करनी है हमारे रेगुलेटर ने उसके अंदर हमने इसको शामिल करना है और फिर जो एक उनकी स्कीम है फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसिंग स्कीम उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विजिट करता है वहाँ से रैंडम सैंपल पिक करता है उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा हम उसके ऊपर कोई 3 months लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स
0: ऑपरेटिंग अंडर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी एवरी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अंडरगोस रिग्रस टेस्टिंग टुडे वन पैनल इज अंडरगोइंग अ वेट टेस्ट
6: स्टैंडर्ड हमें रिकमेंड करता है कि आप इस चीज़ को भी टेस्ट करें और इंश्योर करें कि जब बारिश हो रही है पैनल वेट है तो अंडर वेट कंडीशंस ऐसा तो नहीं है कि जो इंटरनल इसका जो करंट है वो आउटर फ्रेम तक उसकी एक्सेस हो शॉर्ट हो जाए और जो इसको यूज़र है कोई इसको हाथ लगाता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का अंदेशा तो नहीं है कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है
0: पाकिस्तान एक्सट्रीम क्लाइमेट पुट सोलर टेक्नोलॉजी टू द टेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट टू इंटेंस मॉनसून्स एंड विंड स्टॉर्म्स Rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
6: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है माउंटेड है और जालाबारी है हेल स्टॉर्म है तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज़ हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज़ के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया
0: इंप्रूव्ड क्वालिटी एंड वाइडर अडॉप्शन आर ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज अक्रॉस द कंट्री
7: दिस वीक ऑन सिंगापुर आवर Planning a trip to Singapore? Step into these heritage hotels for a stay like no other.
8: Like I stepped into 100 years ago.
9: Very cool, huh?
7: And stop over at this Insta-worthy neighborhood where tradition thrives and subcultures find their stage.
10: Kampung Glam represents a very different side that you don't really get to experience in Singapore.
7: Your Insider's Guide on Singapore Hour, Friday on CNA.
11: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
12: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
11: On East Asia Tonight, with me, Otelli Edwards.
9: Give me your handphone. Give me your handphone.
13: Some acts of love last a lifetime. Caring is one of them.
14: 14年了嘛, 我很珍惜跟他在一起的每一天。
15: 无论怎么样, 我一直都会在你身边。
13: Stories of sacrifice, devotion, and unwavering love.
16: 你不能够动, 我就是你的手和脚。
17: 在他有生以年, 我孝顺他了, 我足够了。
13: An ode to those who care.
18: 谢谢你们爱我。
19: I love mommy.
13: Watch By Your Side on demand at cna.asia.